0: Yeah, bienvenue sur Audiometric, Allegre FM, Jet FM, Echo J. Garrigue, Radio Active, Radio Grenouille, 8 Ray and Air. Another, whatever, forever. Next up, parce que je suis en train de restaurer mon putain de maison. Et j'ai pas beaucoup de temps de vraiment écouter la musique pour créer un super playlist. Mais j'ai Subset, j'ai Fadai Pasha, j'ai quelques nouveautés et on y va. Your DJ is Black Safichi.
1: I came to Paris intending to stay only a month. I've since decided to stay on another two or three. I came to Paris intending to stay only a month. I've since decided to stay on another two or three.
2: You are listening to Audiometric, Black Safichi, Allegra FM.
3: Kia?
4: Gigi.
5: शायरी थोड़ी आती है हम क्या करें लेकिन हम सच कहते हैं मेम साहब आपसे खूबसूरत कोई नहीं कोई
6: आई एम प्रपोजिंग दैट वी टेक एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन दिस सिचुएशन आई एम प्रपोजिंग दैट वी टेक एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन दिस सिचुएशन आई एम प्रपोजिंग दैट वी टेक एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन दिस सिचुएशन आई एम प्रपोजिंग दैट वी टेक एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन दिस सिचुएशन
7: Specifically interested in the response time. Small pyrotechnic charge is detonated. It all just takes a fraction of a second. Fraction of a second. Fraction of a second. Fraction of a second. Fraction of a second.
8: David Toms, and the more I watch this man, the more I'm impressed by the quality of his swing. The more I watch this man, the more I'm impressed by the quality of his swing. The more I watch this man, the more I'm impressed by the quality of his swing. Beautiful rhythm,